करता है न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को।

0: Very haunting. Very haunting indeed. Jasmine Sandis, Satinder Sartaj, and Kere Pase Jaiye Sajna, Durandar, The Revenge. And that was your listener's choice.
1: Listener's choice, brought to you by Star Plus, Star Gold, and Star Bharat.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत चैनल पार्टनर्स टॉप अप फूड्स एंड परी बासमती राइस
0: राइस स्टिल टू कम आई गॉट अनदर क्वेश्चन फॉर यू एंड वी प्ले बीट द इंट्रो सो स्टिक अराउंड
1: द गोल्ड रेट विद सनराइज रेडियो ऑन 963 एंड 972 एएम इन लंदन नेशन वाइड ऑन डीएबी वर्ल्ड वाइड वाया sunriseradio.com ऑन द फ्री सनराइज रेडियो ऐप फॉर योर होम स्मार्ट स्पीकर्स एंड फॉर द रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप स्टे कनेक्टेड टू योर फेवरेट सनराइज रेडियो 24 hours a day, 7 days a week.
0: Gold is currently trading at £105.92 per gram.
3: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

0: Run.
1: Bow. Yeah. भाई तेरा बस लिखते गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन्हें दिक्कत पर है जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए